0: ORS le Zinki subcenter naibira athlonin alakthia no pang ko thalo chu ni sompali chuang zing tek turania ko thalo are hnu po in ni sompali chuang zing tek nge nge turani no pang ko thalo tana ORS le zing tek hi treatment him ania ko thalo atidam chakani no pang no te hnu te nilai ko thalo ti chu ei tur hnu te pek thul lo tur andam lo lai le tam hnu po in thataka ei tur pek zel turani nu in nau cho asiam do ne mo nau cho ashai do ne mo nau ek ati fai ne mo sabuna fai taka kutsil zel turani pochalawa wanga taksa in tuyet lak cham lo nan awares le zing pe bat chinang che pochalaw laka ilo filin the nan finally thiam min na ngai pui mo la ifa te tharuk an kin thengin nu hu te chau pela tui thiang him chau in tir thin pa ka vaccine hun taka lak ti chinang che
1: यह आकाशवाणी आइजोल और आप सुन रहे हैं 100.7 पर एफएम जोएब के आरजे क्यूकी के साथ हाजिर हैं आज का पहला प्रसारण का पहला खंड है हाजिर हैं आपकी मन पसंदीदा हिंदी फिल्मों गीतों के साथ तो चलिए इस खंड की हम शुरुआत करते हैं हिमेश रेशमिया की खूबसूरत आवाज के साथ और ये गीत आप सभी प्यारे श्रोताओं को हमारी तरफ से खास

हिमेश रेशमिया की खूबसूरत आवाज में। और इसी के साथ आप सभी सुन रहे हैं 100.7 पर एफएम जो है आपके आरजे किमकिमी के साथ। बढ़ते हैं फटाफट, बिल्कुल वक्त को जाया नहीं करते हैं और सुनते हैं इस खंड का पहला गीत। अभी हम सुन चुके हैं तो चलिए सुनते हैं दूसरा गीत। ये होगा जुबिन नौटियाल और असीस कौर की आवाज में।

0: तो चलिए था जुबिन नौटियाल और आसिस कौर की आवाज में, बढ़ते हैं इसी के साथ फटाफट अगले गीत की और, जो होगा दे दे प्यार दे फिल्म से। और गीत आप सभी प्यारे श्रोताओं को हमारे तरफ से, और हमारे सामने जो खड़े हैं हमारे आरजे, जो आरजे आपका आरजे इंग्लिश आरजे पुत्या, आज इनका जन्मदिन है तो इनकी जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। अरे खूब खाते पीते ढुले रहे यूं ही और हंसते रहे, तो चलिए इन्हीं के नाम पे अगला गीत ये रहा।
1: यू टेक केयर, ओके
2: मां,
1: यू टेक केयर,
2: ट्रेक टू टुमार हॉय
1: ट्रेकिंग।

दिल रोई जाए, ये था दे दे प्यार दे फिल्म का गीत। और पीसी जेसिका ई आर जे किम किमची बाई निमनुआम और राता लंबी आखा मोई तप्तानी। नेक्स्ट खनंग ले दूती पुईता नरंतिया जेल जाम है नार जी किम। नमस्ते सुप्रभात, आपको भी नमस्ते और सुप्रभात। ये प्ले लिस्ट दे दूती पुई ने निंतान जोरम रिमो एफ एम जो एंग आई लतु जंग जंग तान ले कंट्रोल रूम दूती ते ले दूती ऑफिसर तान ले पुसांग मा मते नो परमिशन वेंग खलंग अमी अतान ले आर जे वी एल ई माई लविन अरुंधिया वो इन ड्यूटी नॉम लेकन लोम एम एम ए जेल जामा बी एल चोंग थू। इन्होंने हमें क्या भेजा है? मैसेज पांग आए होंगे। ओ बी एल चोंग थू है रंथन सुवाल पल मो पोचुनी से बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत होने वाला है बहुत ही खास, और ये गीत आप सभी प्यारे श्रोताओं को हम समर्पित करना चाहेंगे। यूं ही हमें प्यार देते रहिए अपने प्यारे प्यारे और मीठे मीठे संदेशों के जरिए, क्योंकि आपके प्यार ही है, आपके संदेश ही है हमें एफएम जोय को पूरा करता है। तो चलिए, अभी जो हमने सुना था ये था दे दे प्यार दे फिल्म का गीत। अगला गीत होने वाला है अपना बना ले और अरिजीत सिंह की आवाज में।

अरिजीत सिंह और सचिन जिगर की आवाज में। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, लेकिन उससे पहले नजर आपके संदेशों की ओर। चुनी से अगला गीत होगा वी कुंग तेतान लियाओ लियाओ। अगला गीत हम समर्पित करते हैं ये रहा सचेत और परंपरा की आवाज में।

ये था सचेत और परंपरा की आवाज में, और इसी के साथ आप सभी सुन रहे हैं 100.7 पर FM जो आपकी आरजे किम किमी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले गीत की ओर। अगला गीत होगा खास आप सभी के लिए, आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं के लिए। वक्त को बिल्कुल जाय नहीं करते हैं, तो बढ़ते हैं अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में।

अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट, और यहाँ पे अवि कुंगतिया, इन्होंने हमें हिंदी में संदेश भेजा है, तो चलिए फटाफट पढ़ते हैं। अर्जुन किम किम, तुम बहुत अच्छे से समझते हो, बिल्कुल परेशान मत होना। क्या बात है, इतना अच्छा और इतना प्यारा संदेश आपने हमें भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवि कुंगतिया जी। और उम्मीद करते हैं कि आप हमें यूं ही प्यारा संदेश यूं ही भेजते रहिए। जिलजामा, ये बहुत हंस रहे हैं, क्या बात है। तो अगला अगला संदेश, आपका संदेश हम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं फटाफट अगले गीत की। और अगला गीत होगा ये जवानी है दीवानी फिल्म से, और गीत के बोल हैं इलाही।

इसी गीत के साथ वक्त हो गया इस खंड के आखिरी गीत का, और यहाँ पे जो ले जेल इल्जाम आयानिन अर्जे किम के वी आवी कुं कोपलोर लोर थियाम अते आंगिन मिदंग का कॉप थियाम वेला रंती ट्राई में नहीं वो किंतु वी कुंगते है ना आपको शायद अगर आप शायद सुन रहे हैं वी कुंगते है जी देखिए रजील इल्जाम ने आपको क्या क्या बोला है क्या क्या संदेश भेजे अनि जोंग मंगा इना हसेम जाई थियाम बा का आ कॉप लोर थियाम ए मतिन ये रंती ट्राई में नहीं जेल इल्जाम है वो वी कुंगते का लोग आई थाइम ओ नेक्स्ट सॉन्ग पो मंगा इन मंगा अना सेम जाई थियाम तान निलविन इतान चो तो चलिए इस खंड का आखिरी गीत आप सभी के लिए, लौटेंगे हिंदी के कुछ और गीतों के साथ 11:20 पे, और इस गीत के बाद आपका साथ देने आएंगे आपका अपना आरजे पुतिया अंग्रेजी गीतों के साथ, साथ दीजिए उनका और सुनते रहिए 100.7 पर FM जोए।

हाजिर है आज के इस दूसरे खंड में 100.7 FM जॉय पे आपकी आरजे की किमी के साथ। तो चलिए इस खंड की हम शुरुआत करते हैं के और प्रीतम की आवाज के साथ, तू जो मिला।

की आवाज में, और इसी के साथ आप सभी सुन रहे हैं 100.7 पर FM जोवाब की आरजे किमी के साथ। उम्मीद है आप सभी इन गीतों का आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले गीत की ओर। अगला गीत होने वाला है बहुत ही खास आप सभी के लिए और आप सभी का पसंदीदा गीत। तो चलिए ये रहा

तो ये था बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपकी पसंदीदा गीतों में से एक। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले गीत की ओर। अगला गीत होने वाला है आप सभी के लिए, और चलिए

अलका याग्निक की आवाज में, और आप सभी सुन रहे हैं 100.7 पर एफएम जो एप के आरजे किमकिमी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की, और अगला गीत होने वाला है विशाल मिश्रा की आवाज में, और इस गीत के बोल हैं कैसे हुआ।

तो दोस्तों अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आपके संदेशों की ओर डालते हैं। लदन पुई यानी नारजी प्ले ले तुर्खा नंगमा तान ले लो आई थतु जोंग जोंग तान ल्यार जे जोंग जोंग तान ले कछ्यांते वेंग शंग शंग मीते आर सी अरिन मोय लुआंग वान जो वाल पुया अथनी ते पुय ते तान अरंती आ लल दिन पुय फल कोन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला गीत आपके इन सभी दोस्तों को भी हम डेडिकेट यानी कि समर्पित करते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगला गीत भी होगा इसी फिल्म से यानी कि कबीर सिंह फिल्म से ही होगा। और इस गीत को आवाज दिया है विशाल मिश्रा और अरमान मलिक ने। तो सुनते हैं इस अगले गीत को पहला प्यार।

दोस्तों, ये था पहला प्यार और इसी के साथ आप सभी सुन रहे हैं 100.7 पर FM जवाब की आरजे किम किमी के साथ। और चलिए, इस वक्त हमारे पास पूरे के पूरे 5 मिनट शायद तो वक्त को बिल्कुल जाया नहीं करते हैं और सुनते हैं अगला गीत विशाल शेखर की आवाज में, बिन तेरे।

तो इसी के साथ वक्त हो गया इस खंड के आखिरी गीत का और लौटेंगे हिंदी का आज का आखिरी खंड जो होगा 2:35 पे हिंदी के कुछ और गीतों के साथ। यूं ही प्यार देते रहिए अपने संदेशों के जरिए और सुनते रहे हमें यानी कि 100.7 FM ज़ोए को। तो चलिए इस खंड का आखिरी गीत आप सभी के लिए छोड़े जा रही हूँ विशाल शेखर की आवाज में बिन तेरे यही गीत और सुनते रहे 100.7 पर FM।

ए तुरखा नंगमा तान ले आ लोंगाई थतु जोंग जोंग तान ले आरजे जोंग जोंग तान ले का छ्यानते वेंगशंग शंग मी ते तान लल दिन पुया फल कोन ही आनी ना रुंती आ बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। और बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, अलका याग्निक की, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में, और इसी के साथ आप सभी सुन रहे हैं 100.7 पर FM ZOWEBRJ किम किमी के साथ। उम्मीद है आप सभी गाने का आनंद ले रहे होंगे। RJ प्ले

संगीत और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज में उम्मीद है आप सभी गीतों का आनंद ले रहे होंगे और साथ ही साथ भेजिए अपने प्यार यानी कि अपने मीठे मीठे और प्यारे प्यारे संदेशों की बौछार कीजिए। तो बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत होगा आप सभी के लिए खास, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में आप सभी के लिए ये गीत हम समर्पित करना चाहेंगे और सुनिए आनंद लीजिए इस गीत का।

नमस्ते आपको भी नमस्ते नलदेव देव खलो प्ले जेल रोगन लवाई थरिंग चेनिया रंतिया बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बात पे चलिए अगला गीत हम आपको समर्पित करते हैं और सुनते हैं अगला गीत हमें राही प्यार के कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। और गीत के बोल हैं यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से आप सभी के लिए।

तो दोस्तों ये था कुमार सानू और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज में। और चलिए वक्त हो गया इस खंड के आखिरी गीत का। खंड का आखिरी गीत आप सभी के लिए हम समर्पित करना चाहेंगे। बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, अभिजीत की आवाज में। गीत आप सभी के लिए यूं ही प्यार में देते रहिए आकाशवाणी 100.7 FM जवाई का। और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और इसी गीत के साथ आप सभी को छोड़े जा रही हूँ और आप सभी को आपकी आरजे किमकिमी की तरफ से शुभ संध्या।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। यह हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से 1 दिन पहले हुआ है, जिसमें अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ सकता है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In his departure statement, the Prime Minister said his visit to the three countries will further strengthen India's Act East policy, Mahasagar vision, as well as the country's outlook towards a free and open Indo-Pacific. Prime Minister Modi said his visit to Indonesia will further deepen the comprehensive strategic partnership, which was elevated during his 2018 visit and follows President Prabowo's state visit to India as the chief guest at the Republic Day celebrations in 2025. Prime Minister Modi said he will also interact with the Indian diaspora and visit the Prambanan temple complex in Yogyakarta with President Prabowo. From Indonesia, the Prime Minister will travel to Melbourne at the invitation of Australian Prime Minister Anthony Albanese. He said the visit will strengthen the India-Australia comprehensive strategic partnership through discussions on defence and security, trade and investment, education, mobility, emerging and critical technologies, sports and people-to-people ties. He will also interact with the Indian diaspora. The Prime Minister will then visit Auckland at the invitation of New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. He said the visit will build on the momentum in bilateral ties following Prime Minister Luxon's visit to India in March last year, with discussions focusing on economic, trade and commercial engagement. Railways Minister Ashwini Vaishnav has said that more than 300 special trains will be operated for the Rath Yatra of Lord Jagannath this year. These are in addition to the regular more than 800 trains. Talking to reporters in New Delhi today, Mr. Vaishnav said he will review the railway preparations for the upcoming Rath Yatra to ensure smooth operation.

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम ज़ोय पर। आपके साथ जुड़ी है आज एवं डे। समय हो रहा है शाम के 5:30 बजे और ये सिलसिला जारी रहेगा 6 बजे तक। और इन मिनटों में हम चाहेंगे कि हम आपका खूब मनोरंजन करें। और इस भाग में मैं आपको सुनाने वाली हूँ हिंदी फिल्मों के गाने जो कि बहुत ही खूबसूरत होने वाले हैं। सबसे पहला गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो होगा तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और इस गाने के एल्बम का नाम है ओ प्रिया प्रिया। और इस गाने से ही हम इस भाग की शुरुआत करेंगे और मुझे आशा है कि आपको जरूर पसंद आएगा। आइए सुनते हैं तुमसे मिलकर ना जाने क्यों।

तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे आपके मैसेजेस। नागते पाबिल को क्लियर ने लिखा है, आज ओमते नमस्ते, आपको भी नमस्ते। इलप्ले ले तुरखा विकुंगते या गुड बॉय पीसी जसिकाई के वाला तुई क्वाल ले इतान कर लाने हैं। रंजे दिखा के पाफेल छीन को मैं कमान लोम छीन तक एम। हितेंद्र दास असम ने लिखा है, गुड इवनिंग आरजे, आरजे जी हाउ आर यू। आई फाइन, बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र जी, नमस्कार। आपको भी नमस्कार। और आपका, आपने लिखा है कि आपको हमारा हिंदी कार्यक्रम जो है वो बहुत पसंद आ रहा है और बारिश भी हो रही है और मिनी बॉक्स में आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिएगा, अगला गाना आपके लिए मैं प्ले करने वाली हूँ। और दोस्तों उन सभी के लिए जो इस वक्त हमारे साथ FM ZOY पर जुड़े हैं, सुनते हैं पहला नशा सनमपुरी की आवाज में।

हम और आप जुड़े हैं फिल्म जोए पर, आपके साथ जुड़ी है आज ओम दे। हमने सुना सरम पुरी की आवाज और जुजुबन की आवाज में साथ रहे तू मेरे। अगले गाने की ओर बढ़ने से पहले आपके ढेर सारे मैसेजेस आए हैं, उन्हें पढ़ेंगे। लल दिनपु यफल कौन बेंगलाई ने लिखा है, आज इपले ले तुर खा नगमा तान ले लवा थवे जोंग जोंग तान ले आज जोंग जोंग तान ले कठियान ते वेंग शंग शंग मीते हर सी रिन मो या तुआ मुआन सवा वाल पुया आ चिन चीना लोम लोमा ते पुया ते तान अरों तीनी लल दिनपु यान मो खै एफ एम गाई सांग एम एम टू एफ एम ललपा अरों दिनी आइन से दिखो पांग ओमेगा सांग ते हियान जनीन चिसेल न छाने या ड्यूटी तो रिन दो सकना कल्ला न छे दारू खीर थे लाउ से अब हन दो छीन जई मामा छीन ओ कलोम छीन मंगे के वाला हियान आज ओम ते लाउ ड्यूटी हियान किम लाउ ओम तत छीन इतिवे एम तिवे एम ई ई सोई तुम ले के सोई तुम ही नंगे मो कशे लावा रब तो रियल छार तो रनम लो रिंग ते पो ही ई कन बहु तन छाद लो उजिया ते चियांग तो अनि इन कशे आ मो कै खबोंग तक चल गे कन बे से। आगे बढ़ते हुए सुनते हैं दोस्तों एक और खूबसूरत गाना जो मैं आपको स्टूडियो से सुनाने वाली हूँ। हम सुनेंगे कभी तुम्हें दर्शन रावल की आवाज में शेर शाह मूवी से, और ठीक इसके बाद हम सुनेंगे ओ साथी।

लाइफ इन मेट्रो मूवी से दोस्तों अलविदा, क्या खूब गाना है। आई होप आपको जरूर पसंद आया होगा। ये गाने जो है दोस्तों बहुत ही शिद्दत से प्रीतम ने संगीत दिया है इसमें, और गाया भी, इनकी आवाज भी हमें थोड़ी सुनने को मिली। और इस गाने सारे एल्बम जो है बहुत ही खूबसूरत बनाए हैं। प्रीतम का संगीत कभी फालतू नहीं जाता, इतना तो हम कह सकते हैं ना। और के की आवाज क्या जोड़ी है दोस्तों। अगला गाना भी कुछ इस तरह हम सुनेंगे। सुन रहा है ना तू, आशिकी 2 का ये खूबसूरत गाना।

हम सुनेंगे। और दोस्तों अगर समय होगा तो हम एक और गाना सुनेंगे इसके बाद। फिलहाल सुनते हैं, सुन रहा है ना तू, रो रही हूं मैं आशिकी 2 से।

साथ दोस्तों मैं आरजे ओमती आपसे इजाजत चाहूंगी, वापस मैं आपसे जुड़ूंगी बहुत जल्द, बहुत जल्द यानी कि 7:30 बजे, जुड़े रहेगा FM Zoy के साथ।

हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एफएम जॉय पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे उमदई। 7:30 बज रहे हैं हमारी स्टूडियो की घड़ी में और ये सिलसिला जारी रहेगा 8 बजे तक। और इस भाग में भी हम आपको सुनाने वाले हैं हिंदी फिल्मों के गाने। और सबसे पहला गाना तो मेरा फेवरेट है, जो कि मैं जब भी ड्यूटी होती है मेरी तो मैं आपको जरूर सुनाती हूँ, जहां निसार केदारनाथ से अरिजीत सिंह की आवाज में।

मेरे महबूब कयामत होगी, ये था सनमपुरी की आवाज में। और आई होप दोस्तों आपको बहुत मजा आ रहा होगा। नुई पचवाओ का मैसेज है, आज योम तेजी बाई ए नंग पोचे बाई ले इपले ले तुरखा खाकते पा बिल को थीर पीसी जसी काई पीसी मजा रह के वाला तितान ले आज जो दिन दिन इन परी तान लियाओ लियाओ इन रोन तीरी नुई पचवाओ यान कन वहन लोम छीन तक एम ओ खैनल टोक टोक का कलर ऑन प्ले डोंट नो मिलो गाइस चर चर डोंट दिया। अगला गाना दोस्तों जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है एक विलन मूवी से हमदर्द।

हमदर्द, ये हमने सुना एक विलन से अरिजीत सिंह की आवाज में। अगले गाने को ओवर सुनने से पहले अगले गाने की ओर, अगले मैसेज की ओर बढ़ेंगे। और ये मैसेज हमें मिला है मीनल अहमद करीमगंज से। इन्होंने लिखा है, गुड इवनिंग आरजे, आपको भी गुड इवनिंग। मैं ये गाना सुनना चाहती थी, रिक्वेस्ट करना चाहती थी, करने से पहले आपने प्ले कर दिया। बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपके रिक्वेस्ट करने से पहले ही मैंने प्ले कर दिया। शायद मैं आपका दिल मैं जानती हूँ, है ना। खुदा बुरी नजर से बचाए आपको, चांद सितारों से सजाए आपको। गम क्या होता है ये आप भूल ही जाओ, खुदा जिंदगी में इतना हंसाए आपको। बहुत बहुत शुक्रिया मीनल अहमद, ये आपका नाम है ना मीनल अहमद? अगर है तो आप हमें भेजिए कि है, अगर नहीं है तो हमें आपका ये जो नाम जो है, जो हमने यहाँ पे सेव किया हुआ है, वो बदलना पड़ेगा। क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो ये सुनना चाहता था, करना चाहता था, तो मीनल मुझे लगा कि लड़की का नाम है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अगर नहीं है तो आप जरूर हमें बताइएगा। लल्दीनपु एफल कौन वे लाइन लिखा है, आरजे प्ले ले तुर्खा नगमा तान ले लोगा थे जुम जुम तान ले आरजे जुम जुम तान ले कचान ते वेंग शंग शंगमी ते तान ले अमाल दिन पुया फल कौन तान कर अंतन सकवे। ओके मायान, आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक और बेहतरीन गाना जो कि हम सुनेंगे अरमान मलिक की आवाज में, और ये होगा मेरे फेवरेट गानों में से एक, पहला प्यार कबीर सिंह से।

तू पहला पहला प्यार है मेरा। आपको कैसा लगा दोस्तों, मैसेजेस द्वारा हमें जरूर बताइए। मीनल अहमद ने हमें लिखा है, अर्जय ये शायरी आपके लिए था अर्जय जी। हाँ मैं ही हूँ मीनल अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आपके शायरी के लिए भी। और इन्होंने एक और शायरी हमें भेजी है, हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को, हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को, खुदा करे जिससे वो भी चाहे किसी और को। मैं और मेरे दोस्त हितेंद्र दास फिलहाल ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। उन्होंने प्रोग्राम शेड्यूल दिया मुझको, क्या क्या प्रोग्राम है आज, इसके बाद हम आपको सुनाने वाले हैं। ठीक इसके बाद यानी कि ठीक 8 बजे हम आपको ले चलेंगे समाचार की ओर। फिर 8:02 पर हम आपको सुनाने वाले हैं वेस्टर्न म्यूजिक। फिर 8:30 बजे मैं आपसे फिर जुड़ूंगी आरजे चॉइस के साथ। इसीलिए आपसे और हितेंद्र दास जी से निवेदन है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगला गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो होगा मेरे फेवरेट सिंगर में से एक, कुमार सानू की आवाज में, मेरा दिल भी कितना पागल है, साजन मूवी से।

इसी के साथ दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस आखिरी भाग में, आखिरी भाग में नहीं, इस भाग के आखिरी गाने की ओर। और हम सुनेंगे ये एक और खूबसूरत गाना, मैं अगर कहूँ। और इसी के साथ मैं आरजी ओमते आपसे इजाजत चाहूंगी, वापस मैं आपसे जुड़ूंगी बहुत जल्द, यानी कि ठीक 8:30 बजे आरजे चॉइस के साथ। ठीक इसके बाद हम आपको सुनाएंगे समाचार और आरजे एली आपके साथ रूबरू होगी वेस्टर्न म्यूजिक को लेके। जुड़े रहिएगा FM ज़ॉय के साथ।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत एफएम जॉय पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे ओमते। समय हो रहा है 8:30 बजे और इस बार भी मैं आपको अपने मन पसंदीदा गाने सुनाने वाली हूँ एक बार फिर, और बिना वक्त जाये किए आपको सीधा मैं ले चलूंगी जब हैरी मेट सेजल मूवी के इस खूबसूरत गाने पर, हवाएं, जो कि शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा पर फिल्मा गया था। आवाज हम सुनने वाले हैं अभिजीत सिंह की और संगीत दिया है प्रीतम ने। आइए सुनते हैं हवाएं जब हैरी मेट सेजल से।

हवाई अरिजीत सिंह की आवाज में। अगले गाने के बनने से पहले ही दिनदास असम का मैसेज है। इन्होंने लिखा है कि इन्होंने गाने की फरमाइश की तेरे होठों के दो फूल पारस से, लेकिन हितेंद्र जी ये फिलहाल मेरे प्लेलिस्ट में नहीं है तो मैं उन्हें प्ले नहीं कर पाऊंगी, माफ कीजिए। लेकिन अगला गाना जो है केवल आपके नाम मैं प्ले करने वाली हूँ। ये एक और खूबसूरत गाना आप सभी के लिए अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में हम सुनेंगे, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया मूवी से समझावा।

श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह के आवाजों में हम्ती शर्मा की दुल्हनिया मूवी से समझावा। ललदीन पुई अफल कौन वेंग लाई ने लिखा है आरजे प्ले ले तुखा नंगमा तान ने लवाई थवे जोंग जोंग तान आरजे जोंग जोंग तान ले गठियान ते वेंग शंग शंग मी ते तान अरों ती नी ललदीन पुई हियान कन वहन लोम छीन तक एम ओ मिनों थन मई गाय लो रेंग रेंग अनि मो दिन पुई हियान। अगले गाने की ओर बढ़ेंगे और सुनेंगे एक और सुपरहिट गाना, खूबसूरत गाना, और वो होगा तुझे कितना चाहने लगे हम, कबीर सिंह से, अरिजीत सिंह की आवाज में और संगीत दिया है मिथुन ने। आइए सुनते हैं तुझे कितना चाहने लगे हम।

मैसेज जो है मिंगमोते का आया है. इन्होंने लिखा है, आज उमते नमस्ते, आपको भी नमस्ते. अगला गीत इतान लेहिते ने दास के लिए हिंदी रोन बेनल थे तो पंजाब में मोहिते यान वो. बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र जी, आप सुन रहे हैं मोहिते ने आपके लिए ये अगला गाना जो है समर्पित किया है. अगला गाना इसी के साथ हम सुनेंगे, और हम अगला गाना जो सुनने वाले हैं आशिकी 2 मूवी का टाइटल ट्रैक मेरी आशिकी तुम ही हो. अरिजीत सिंह की ही आवाज हम सुनेंगे, पलक मुच्छल भी है और मिथुन भी है, इन तीनों की आवाज हम सुनने वाले हैं और संगीत दिया है मिथुन ने, मेरी आशिकी तुम ही हो.

ये था आशिकी टू से तुम ही हो, इस मूवी का टाइटल ट्रैक, जो कि इसका दोस्तों जो पहली मूवी थी आशिकी, उसके भी सारे एल्बम के गीत जो हैं सुपरहिट हुए थे, और इसमें भी सारे गाने जो हैं सुपरहिट, ये उन्हीं में से एक था। और आगे बढ़ेंगे, लल्दी पू एफल को रिंग लाइक का एक और मैसेज है इन्होंने लिखा है। आज प्ले ले तू खाना मा तान ले लोंगा थवे जों जों तान ले आज ये जों जों तान ले क छान ते वेंग शंग शंग मी तान ले पार पारी पु तान कुंग ते या मिंग मोय ते के वाला तुई क्वाला मी ते तान नरों ती नी अवन फेल छिन तक एम ओ दल दिन पु यही कन चुक लवा नी तरो। ये मैसेज है मीनल अहमद करीमगंज से, इन्होंने लिखा है। इन्होंने गाने की फरमाइश की है, लेकिन मीनल जी हमारे प्लेलिस्ट में, इस बार मेरे प्लेलिस्ट में जो है ये गाना नहीं है, क्योंकि पहले से ही बना हुआ है मेरा प्लेलिस्ट, तो माफ कीजिए। इन्होंने लिखा है, मैं ये गाना डेडिकेट करना चाहूंगा सबसे पहले आवाज की दुनिया का मालिक आरजे आपके लिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे फेवरेट सभी आरजे के लिए, सभी दोस्तों के लिए डेडिकेट रहेगा। हमी मनबा लिंडियो रमोना जी फ्रॉम गोवा, हिदेन्द्र दास, रूबी शुमा, झुमा, उमा शंकर, अभिजीत, अफसाना, उमरजीत, रहीमा, रजवाना और सनी। वक्त के मोड़ पे ऐसा वक्त आया है, जख्म दिल का जुबा पर आया है, न रोते थे हम कांटों की चुभन से, पर आज न जाने क्यों फूलों की खुशबू से रोना आया है। वाह वाह वाह, क्या शायरी है दोस्तों। मीनल जी की शायरी सुन, पढ़ के और सुन के तो हमें, हमारे आंख में आंसू आने वाले हैं। चलिए दोस्तों, ये एक और गाना हम सुनेंगे, दो गाने हम और सुन पाएंगे। पहला गाना सुनते हैं तेरा यार हूं मैं, सोनू के टीटू की स्वीटी मूवी से, अरिजीत सिंह रोचक कोहली की आवाजों में।

इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं इस भाग के अगले गाने की ओर। हम सुनेंगे हुआ है आज पहली बार अरमान मलिक और पलक मुछल की आवाजों में, और वापस मैं आपसे जुड़ूंगी ठीक 10 बजे। कहीं मत जाइएगा क्योंकि ठीक इसके बाद हम आपको ले चलेंगे समाचार की ओर। उसके बाद हम सुनने वाले हैं आरजे जोदिनी से मिजो लव सॉन्ग्स। जुड़े रहिएगा FM ज़ोए के साथ।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एफएम जॉय पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे उपदेई। 10 बज रहे हैं और ये आखिरी सेगमेंट है आज के लिए। और दोस्तों, मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ बने रहिएगा 10:30 बजे तक, और मैं आपका मनोरंजन करूंगी हिंदी फिल्मों के गानों द्वारा। और सबसे पहला गाना जो मैं आपको सुनाऊंगी वो है दो लफ्जों की कहानी मूवी से, जो कि रणदीप हुड्डा और काजल अग्रवाल पर फिल्माया गया था। कुछ तो है, बहुत ही खूबसूरत गाना है दोस्तों, और मैं चाहूंगी कि आपको जरूर पसंद आए, और आशा करूंगी कि आपको जरूर पसंद आएगा। आइए सुनते हैं कुछ तो है।

दोस्तों, ये था अरमान मलिक की आवाज में कुछ तो है, और मूवी का नाम है दो लफ्जों की कहानी। दुर्गेश नागनपुरे जी का मैसेज है, इन्होंने लिखा है, माफ कीजिए, मीनल अहमद, इन्होंने लिखा है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं था, हितेंद्र दास का मैसेज मैं पढ़ूंगी। इन्होंने लिखा है कि ये लास्ट सेगमेंट है आकाशवाणी का और इनको हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, और इन्होंने उसी गाने की फरमाइश की, तेरे होंठों के दो फूल, पारस मूवी से, जो कि फिलहाल मेरे पास नहीं है, माफ कीजिए, इसीलिए मैं फिलहाल उन्हें नहीं, उस गाने को मैं प्ले नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगला गाना जो मैं प्ले करने वाली हूँ वो आप सभी के लिए, बेसब्रियां और फिर कभी, दोनों ही गाने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से है। अरिजीत सिंह की आवाज हम सुनने वाले हैं, आइए पहले सुनते हैं बेसब्रियां।

सो ये दोनों गाने थे एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से, जो कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा पाटनी पर फिल्माया गया था। आवाज हमने सुनी अरिजीत सिंह की। आगे बढ़ेंगे और ये आपके मैसेजेस कम पढ़ेंगे। जोनोकस बॉय का मैसेज है, इन्होंने लिखा है तुरंत किन होला ड्यूटी ले वत लाई हो को अफिम खोर ला ओ नवाम दे नेक्स्ट इतान रंदीनी। हाँ थैंक यू। आ कलम लो तो क्या मैसेज चार खाद वेले में आ जोन जो अलोम हम छीने। आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम सुनेंगे एक और खूबसूरत गाना, और इस बार हम सुनने वाले हैं सनमपुरी की आवाज में बुलिया।

और आप जुड़े हैं एफएम जोई पर, आपके साथ जुड़ी है आरजे उमदे। समय हो रहा है 10:20 होने वाले हैं, नहीं हो अभी तक नहीं हुआ है और ये सिलसिला जारी रहेगा 10:30 तक। कुछ और गाने हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले ओमेगा शांति का मैसेज है। Iplay tour te kai tal liao liao ron ti ni ho mega sang te ka ban lom chin tak em oh ram ngai omi hian moi deu deu kha lo play zero i la play tour jong song kha bl chong thu tan le shipoa bia kale mal so mate tan ka lo lane ron ti ni ram ngai omin oh in van fel liam liam chin tak em oh chuanin nung mo te hian om te ta le ngai thatu te ta na ron ti boka Durgesh Nagan pure ne likha hai kin ko hamare karyakram pasand aa raha hai aur ye sun rahe hain hame aur namaskar bhi kiya hai aapko bhi namaskar Durgesh ji bane rahiyega hamare sath agla gana jo hum sunne wale hain wo hai mere mehboob qiyamat hogi Sanam Puri ki awaaz mein

मेरे महबूब कयामत होगी सनम पुरी की आवाज में। अगला गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो भी बहुत ही खूबसूरत है, सनम पुरी की आवाज हम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले जोनोगस बॉय का मैसेज है, जेल अजामा ने भी लिखा है, जेल अजामा ने लिखा है, आरजी ओमते नमस्ते, आपको भी नमस्ते, क्लॉ तकिन होगंग से ओ फिल छीन तक एम। नेक्स्ट सॉन्ग का इतना लेंगा इतना तूते ले करानी जी मई लविन तेरे मई मिलो मई थांग ए कबे से ओ जरगस बॉय हियान निया का बॉय थे जा वा तुन लाई छु कलंग तम थे लवनी ए मेरे महबूब कया मत होगी अमोइल तुक मुतुई सुख सुख ले दिया खै लगन लगाई थांग सो तरो पनी खत कर लगाई थे ना मुत थे लव। अगला गाना आप सभी के लिए जो इस वक्त हमारे साथ एफएम जॉय पर जुड़े हैं सनमपुरी की आवाज में हम सुनेंगे, तेरी आंखों से अपनी नजरें हटाऊं कैसे, जोनिता गांधी की आवाजों में हम सुनने वाले थे। लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे ए दिल है मुश्किल।

आखिरी गाना सुनने से पहले ओमेगा शांति का मैसेज है ओम तेत लोंग दिबिन होला इशिंग नुन हाचोल न ओ ख्वानुन वेंगिन वालिम चरो से दुसक ना दिया मुतुई मंगछाले दिया के इन जवाय खान करन मंगछा दोन जो तुई दे खानिन लौ मुदोन ने आखिरी गाना हम सुनेंगे तेरी आंखों से अपनी नजरें हटाऊं कैसे जनिता गांधी और सनमपुरी की आवाजों में इसी के साथ मैं आरजे ओमते आपसे इजाजत चाहूंगी वापस मैं आपसे जुड़ूंगी अगले हफ्ते किसी दिन तब तक आप स्वस्थ रहिएगा खुश रहिएगा और जुड़े रहिएगा एफएम जॉय के साथ आप सभी को आरजे ओमते की तरफ से गुड नाइट।